भेट ना जावे, उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। क्योंकि ये रविदास भगत जी पूर्व जन्म विखे ब्राह्मण सन, रामानंद जी दे पास रह के सेवा करदे हुंदे सन, रोजाना सत्तां घरां दी भिख्या लैके रामानंद जी नूं छकाउंदे सन। एक दिन बड़ी वर्खा पै रही सी, तदों एक ही जगह तो अन्न लिया के छकावना कीता। इस वेले रामानंद जी समाधि विच बैठे ता आपदा मन नहीं जुड़िया, आपदा मन नहीं जुड़िया ते पुछन से फिर दस्या, महाराज अज इक्के

अज मैं ओशे घरों लिया के आपनू शिकाया ता स्वामी रामानंद जी कहन लगे पाई उसकी मनोकामना पता ही की सी उच्चारण करो श्री वाहिगुरु क्योंकि जिसका शकीए उसका कारज भी करिए उसते तो मन विच ए भावना है भाई महापुरखा नू भोजन करा के ते मैं ए उदे बदले दान लवा के मेरे घर कोई बूटा लग जावे उदे घर कोई औलाद नहीं सी होंदी इस प्रसाद पिछे तो भावना है भाई पुत्र दी ते फिर जे लियाए तो फिर उना दी भावना भी पूरी कर जा हुण तैनू उना दे घर जन्म लेना पेगा ए चम्यारा दा घर सी जिथे भगत रविदास जी दा जन्म होया ते हुण दुध नहीं पींदे बड़े जतन कीते बड़े सियाने सदे पर मां दा दुध नहीं सी पींदे क्योंकि स्वामी रामानंद जी दे नाल पूर्व जन्म दा संग होण करके अंतर जामी स्वामी रामानंद जी अज चम्यारा दे महले विचों आ लंगे इन्हां ने बेनती की थी महाराज साढ़े ग्रह

पंजन बिरद बिरद आयो है जो ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी भये नरक निवारण जगत जस गायो है।

रब दा सुनेहा देते हैं भाई आओ जुड़ो सच दे नाल ए दुनिया दे लोको क्यों परमा भुलेखिया विच पए हो एक परमेश्वर दा नाम सच है उदे नाल जुड़ो आपे ही सारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगत रविदास जी कहते

आवाज आई कि इस धरती ते बड़िया पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद ले इतना तरस रहे, इतना व्याकुल

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद आनंद साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इसनु राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, इसनु गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया